0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। आज हम इस कहानियों के गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानियों के गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की। चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनालिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के एक गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी। समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ। एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा, अरे देख बिरयानी वाला आ गया है। पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर साहब तू क्या करेगा। आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद चारों एक बेंच पे बैठने लगे। स्कूल के बाद कटिंग चाय, क्रिकेट, असाइनमेंट्स, मास्क बंक, पनिशमेंट सब साथ में, और धीरे धीरे दोस्ती फैमिली बन गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, वक्त बदलता है और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, तो ठीक वैसा इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग था। आरव मिडिल क्लास फैमिली से था, फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे, वो बस हंसके सब हाइड करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था, आवाज दिल को छू लेती थी, लेकिन उसके अब्बू चाहते थे कि वो उनकी गैरेज शॉप संभाले। गाने से घर नहीं चलता, ये सेंटेंस उसने हजार बार सुना था। एक रात चारों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, बारिश हो रही थी। कबीर बोला, एक प्रॉमिस करते हैं, जब भी लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आए हम साथ रहेंगे। सबने हैंड्स स्टैक किए, फॉरएवर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव को एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन कंटेंट चैनल, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट। समीर टेक्निकल संभाल लेगा, फैजान म्यूजिक संभाल लेगा, कबीर एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरव डायरेक्शन। सब एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भाई ये नहीं चलेगा यार। लेकिन आरव बोला, एक दिन चलेगा। फैजान चुप था, उसके घर पे प्रेशर बढ़ रहा था। अब्बू रोज बोलते थे गैरेज ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन समीर एक कैफे में फ्रीलांस कोडिंग का काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट पहना हुआ, एक्सपेंसिव वॉच। तुम समीर हो? हाँ, मैं समीर हूं। तुम्हारी कोडिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। उसने ऑफर दिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, काम सिंपल है और उसके तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख चारों के लिए एक काफी ह्यूज अमाउंट था। विदाउट थिंकिंग डीपली उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। 3 महीने तक नॉनस्टॉप काम हुआ, नो स्लीप, नो पार्टीज, नो फन, बस काम। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी मिल गई, सब खुश थे। लेकिन एक वीक बाद पुलिस समीर के घर पहुंची।
1: अकेले अकेले

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 FM में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक YouTube चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक YouTube चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज। लेकिन एक जिद थी कि कुछ करना है, तो एक ऑफर मिला जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था प्रोजेक्ट, वो बना लिया, उससे 5 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन पुलिस आ गई थी अब समीर के घर, तो देखते आगे कहानी में क्या होता है। पुलिस समीर के घर पहुंची। समीर खान, हाँ, तुम्हें साइबर केस में अरेस्ट किया जाता है। सब शॉक, क्या तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है? जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तुम? कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में। सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई थी। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल्ट था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तबारा बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे? कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी। मैं विक्रांत की एक्स एम्प्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना, वो विक्रांत के इलीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट प्रूव हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत थी। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुरा गए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था,
तो चारों ने डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और समीर को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक दोस्त अगर फंस जाता है तो उसके तीन दोस्त उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपनी जान का जोखिम तक ले लेते हैं। अब इसके आगे वाली कहानी का हिस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयर हाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन क्या क्या काम करेगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। चारों विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस में पहुंच चुके थे। सबने डिसाइड किया था अपना अपना टास्क, सबको क्या करना है, और अपने टास्क के मुताबिक काम शुरू हुआ। समीर सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर रहा था, आरव कैमरास देख रहा था, कबीर गार्ड डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फनी एक्टिंग से, फैजान बेसमेंट में फाइल सर्च कर रहा था। सब परफेक्टली चल रहा था, तभी अलार्म बज गया। रन रन रन, गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया, एक गार्ड उसके पास पहुंच गया, लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना। फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया, लेकिन एग्जिट ब्लॉक था, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये एक उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भागकर वो वहां से निकल पड़े।

फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए, लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम, लोग विस्पर करते हैं ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था, फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी, आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाला, उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा, फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की लेकिन क्राइम नहीं, हम गिर गए लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज, लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames You, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव्ड मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा, समीर को स्टार्टअप जॉब मिली, कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा, आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड, हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडेड, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई, चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप भी हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी। उनकी फ्रेंडशिप, कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे धकेल देती है, लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हें जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं, जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं, जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाए वही दोस्त होते हैं, जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होता है। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना।
हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही। हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर। तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। मंडली कसे आहात सगळे, ऑल गुड ना? हमारे प्यारे ऑडियंस की तारीफ में पेश है कुछ लाइनें। अर्ज किया है, स्वाद के जायके की वादियों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको न्योता देते हैं, आपकी मौजूदगी का हमें था बेसब्री से इंतजार। इस खुशी को हम दिल की गहराई से सजाते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि मैंगो मूड वाला फूड हम फिर से बनाएंगे और इस आम वाले सीजन को खास बनाने हम फिर से हाजिर हैं। कच्चा आम मींस कैरी से बनी रेसिपीज तो हमने बना ली, उसके बाद पके हुए आम से भी कई सारी मीठी और तीखी रेसिपीज हमने आपकी खिदमत में पेश की। आज हम एक मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। झटपट बनने वाली मैंगो रेसिपीज तो हमने सीख ली, अब सिस्टमैटिक तरीके वाली मैंगो रेसिपी को हम बनाते हैं। 10th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से होते हुए एक व्यंजन भारत आया, फिर भारतीय मसालों और सब्जियों के साथ इसने अपना रूप बदला। इस रेसिपी का नाम था वेज पुलाव। हरे मटर के दाने और साबुत मींस अखे गरम मसालों को इस्तेमाल करके बनता है मटर पुलाव। गाजर, आलू, गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों को मिलाकर बनता है वेज पुलाव। सब्जियों के साथ साथ अगर इसमें पनीर के टुकड़े भी डाले तो तैयार होता है पनीर पुलाव। और सूखा मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश के साथ पनीर और फलों के टुकड़े शाही अंदाज में पकाकर तैयार होता है नवरत्न पुलाव। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुलाव और बिरयानी में क्या फर्क है? तो जनाब सुनिए, पुलाव बनाते समय चावल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, बिरयानी बनाते समय चावल और करी को अलग अलग पकाया जाता है, फिर उनकी परत मींस लेयर लगाकर दम दिया जाता है। यह है पुलाव और बिरयानी का इम्पोर्टेंट फर्क। अब हम आज की पहली रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है मैंगो पुलाव। मैंगो के सीजन को बाय बाय करने से पहले हम इसे बना ही लेते हैं। मैंगो पुलाव ये एक मीठी रेसिपी है जिसमें अल्फोंसो मैंगोज को कुछ गरम मसालों के साथ बासमती चावल को यूज करके बनाया जाता है। अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल 1 कटोरी, अल्फोंसो मैंगो पल्प 1 कटोरी, बारीक कटे हुए आम के टुकड़े 1 कटोरी, शक्कर 4-5 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, केसर के धागे 15 से 20, इलायची पाउडर 2 चुटकी, देसी घी लगभग 1/2 कटोरी। फिर हमें चाहिए लौंग 4 या 5, काजू बादाम के टुकड़े और किशमिश 4 चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े। दालचीनी के टुकड़ों के बजाय आप उसका पाउडर लें तो पुलाव में थोड़ा सा तीखापन आएगा। फिर हमें चाहिए सोफ्ट पिस्ता के स्लाइस 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इस रेसिपी को सुनने से पहले हम बासमती चावल को अच्छे से धो लेते हैं। चावल को धोकर लगभग 1/2 घंटे तक हम इसे पानी में सोक करते हैं। ऐसा करने से चावल के दाने पानी सोक कर फूल जाते हैं जिससे वो पकते समय टूटेंगे नहीं। चावल के दानों की लंबाई भी बढ़ती है और उन्हें पकाते समय वो बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट बन जाते हैं। लगभग 1 इंच ऊपर तक ताजे पानी में हमें बासमती चावल को सोक करना है। चलिए अब हम मैंगो पुलाव बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाले एक बर्तन में देसी घी को गर्म कीजिए। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। घी गरम होने के बाद उसमें लौंग डालिए, फिर दालचीनी के टुकड़े या पाउडर को भी डालिए। जैसे ही ये पक जाए मींस अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकेंड्स के बाद इसमें 2 कटोरी पानी डालिए। थोड़े समय बाद उस पानी में उबाल आएगा, फिर उस उबलते पानी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद उसमें शक्कर भी डालिए।
साथ ही कटे हुए आम के टुकड़े भी उसमें डालिए। इस स्वाद को एनहांस करने हम डालेंगे ताजे नींबू का रस। अब इस मिश्रण में ऐड कीजिए सोक्ड बासमती चावल। फिर क्या करना है? अरे भाई, फिर धीमी आंच पर इन चावलों को पकने दीजिए। ये चावल जब पक रहे होंगे तब इसकी खुशबू आपको खुश कर देगी। लगभग 15-20 मिनटों के बाद ये चावल पूरी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद वो पके हुए चावल एक प्लेट में निकालिए। अब हमें इन चावलों को ठंडा करना है। जब तक ये चावल ठंडे हो रहे हैं तब तक हमें गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हमारे बासमती चावल हो गए हैं ठंडे और हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। तो भाई आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि एक कढ़ाई में पाव कटोरी घी लेना है, फिर गैस को ऑन करके हमें घी को गर्म करना है। अब इस गर्म घी में हम डालेंगे काजू, बादाम और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करके साइड में रख दीजिए। आप गैस को बंद मत कीजिए। उस बचे हुए घी में फ्रेश मैंगो पल्प डालिए। धीमी आंच पर ये मैंगो पल्प 2-3 मिनटों तक अच्छे से पकाइए। ध्यान रहे ये जले नहीं। फिर उस पके हुए आमरस में डालिए पकाकर ठंडे किए हुए चावल। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी शक्कर और साथ ही आम के कुछ टुकड़े। इसे भी

आप अच्छे से मिक्स कीजिए। आखिर में केसर, इलायची पाउडर और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कीजिए। बाद में इस कढ़ाई पर एक ढक्कन रख दीजिए। एक दो मिनट के लिए मींस एक भाप आने तक इसे पकने दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। एक सर्विंग प्लेट में तैयार मैंगो पुलाव को निकालिए। उस गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू को अपने मन में भी भर लीजिए। फिर सोक्ड और स्लाइस्ड पिस्ता के टुकड़ों से तैयार मैंगो पुलाव को डेकोरेट कीजिए। इस मैंगो पुलाव के साथ क्या खा सकते हैं? तो भाई, इसके साथ आप खा सकते हैं आम का तीखा अचार या गोरी गोरी और क्रिस्पी कुरडई। और इसकी रंगत बढ़ाने के लिए आप एक ग्लास मट्ठा मींस मसाला छाछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हमारा मैंगो पुलाव हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने अगर आप हो रहे हैं बेकरार तो फिर इसे तुरंत बनाइए। अब ये मैंगो पुलाव बन जाए तब इसे अपनों के साथ मिल बांट कर खाएं। एक और खास बात, मैंगो पुलाव को सोफिस्टिकेटेड तरीका मीन्स काटा चम्मच से मत खाइए, इसे अपने हाथों से ही बिंदास खाइए। अपनी उंगलियों से मैंगो पुलाव का टेम्परेचर और टेक्सचर फील कीजिए, फिर एक नजाकत से उसका निवाला उठाइए। खाने से पहले मैंगो पुलाव का अरोमा मीन्स जायका फील कीजिए, बाद में एकदम तसल्ली के साथ आराम से उसे एंजॉय कीजिए। इतना लजीज खाना खाने के बाद उस खाना बनाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए। इस मैंगो पुलाव की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है जश्ने आम। फिलहाल चल रहा है एक मौसम, नाम है जिसका आम। स्वाद का जायका इस शो पर जश्न मनाएंगे खास। कभी बनाया मैंगो पराठा तो कभी मैंगो सालसा, इस आम ने हमारे किचन में सेलिब्रेट किया जलसा। आम तेरे कितने रूप, मैं वारी जाऊं तुझ पे, इतनी शानदार रेसिपीज बनाकर मैं तो इतराई खुद पे। नाम तो है इसका मैंगो या आम, स्वाद है एकदम अनोखा, तभी तो दिल में जगह इसकी खास। इस आम की रेसिपी ने मेरे दिल को इतना लुभाया, साइड में रख दी डाइटिंग और जी भर के आम खाया। मेरे भारत देश से जुड़ी ये आम बातें, दोस्ती होती पक्की खाना खाते खाते। आम का पुलाव बनाकर मनाया जश्ने आम, आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए एकदम खास। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट रेसिपी की ओर। आम के अलावा एक और चीज है जिसे गर्मियों के सीजन में जी भर के खाया जाता है। बॉटनिकली ये एक फ्रूट है, लेकिन ये मिलता है सब्जी वाले के पास। सैंडविच, कचुम्बर और सलाद बनाते समय इसे यूज करते हैं। इसमें 95% से ज्यादा मात्रा में पानी होता है। अपने हाइड्रेटिंग गुणों और कुरकुरेपन के लिए ये फेमस है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से स्किन में चमक आती है, इसलिए अपने ब्यूटी रेजिम में इसे जरूर शामिल कीजिए। जी हाँ, सही गेस किया आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खीरा मीन्स ककड़ी की। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं खीरे की स्मूदी मीन्स क्यूकम्बर स्मूदी। जब ककड़ी को किसी खास अंदाज में स्टाइलिश तरीके से पेश करना हो तब आप खीरे की स्मूदी मीन्स क्यूकम्बर स्मूदी को जरूर बनाइए। ये एक एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग और हेल्दी टाइप का ड्रिंक है। इसे आप लगभग 5 मिनट में झटपट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्यूकम्बर स्मूदी मतलब खीरा स्मूदी को बनाने की क्विक रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बड़ा सा एक खीरा मतलब काकड़ी, ताजा दही 1.5 कप, ताजा पुदीना 8 से 10 पत्ते, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, चीनी मीन्स शक्कर 2 चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं चुटकी भर काला नमक ले रही हूँ। अब हम क्यूकम्बर स्मूदी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर मीन्स ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए, फिर पीलर से उसका छिलका हटाइए। छिलका हटाने के बाद उसके छोटे टुकड़े आप बनाइए। अब सुनिए एक इम्पोर्टेंट बात, उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले खाइए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो वो ककड़ी आप फेंक दें, उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है। कड़वी ककड़ी को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर ककड़ी कड़वी नहीं है तो फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। फिर उस ककड़ी को बारीक टुकड़ों में काट। अब हमें मिक्सर में स्मूदी को बनाना है।
इसके लिए मिक्सर के बड़े जार में खीरा मींस ककड़ी के टुकड़े और पुदीने के पत्ते डालिए। इसे एक मिनट के लिए मिक्सर में घुमाइए। ऐसा करने से इसका फाइन पेस्ट बनेगा। अब इसमें दही, शक्कर और नींबू का रस भी डालिए, साथ ही चुटकी भर काला नमक भी ऐड कीजिए। अब मिक्सर के जार का ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। लगभग एक या दो मिनटों में ये मिश्रण एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब इसे पेश करने का टाइम हो गया है। सबसे पहले एक छोटी प्लेट में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी शक्कर, लगभग आधा या एक चम्मच नमक और शक्कर मिक्स करके रखिए। फिर कांच का एक लंबा ग्लास लीजिए। उस कांच के ग्लास के किनारों को थोड़ा सा पानी लगाइए। फिर उस ग्लास को उल्टा करके नमक और शक्कर की प्लेट पर रखिए। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से होगा ये कि जब आप क्यूकम्बर स्मूदी को सर्व करेंगे तब उसके किनारों पर क्रिस्टल्स जैसी चमक दिखेगी और क्यूकम्बर स्मूदी का प्रेजेंटेशन एकदम प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? फिर उस ग्लास में एकदम आराम से क्यूकम्बर स्मूदी को डालिए। उसके ऊपर पुदीना के दो पत्ते भी रखिए। उसके बाद अपने मोबाइल कैमरा में क्यूकम्बर स्मूदी की छवि को कीजिए बंद, क्योंकि उसे टेस्ट करने के लिए लम्हे बचे हैं चंद। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। इस क्यूकम्बर स्मूदी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मखमली स्मूदी। गर्मी को भगाने के लिए बनाई क्यूकम्बर स्मूदी। इसका टेक्सचर ऐसा लगता जैसे खट्टा मीठा मखमली। ककड़ी में जब मिला ताजा ताजा दही, तब जाकर बना स्मूदी का टेक्सचर सही। इसे पौष्टिक बनाने डालो काला नमक। काला नमक खाकर सेहत जाएगी चमक। इसमें जब डालोगे नींबू की कुछ बूंदे, तब एंजॉय करोगी स्मूदी अपने नैनों को मूंदे। क्यूकम्बर की ये स्मूदी है हिंदुस्तानी और वेस्टर्न फ्यूजन। झटपट बनाओ इसे और दूर करो कंफ्यूजन। जी भर कर खाओ आप देसी खाना। उसके साथ सुनिए आप हमारा अगला गाना।

वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी खाद्य संस्कृति में तरह तरह के व्यंजन हैं। हमें तो बस बहाने ढूंढने हैं उनसे दोबारा मिलने के। अब आप क्यूकम्बर स्मूदी की ही बात ले लो। हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति में थाली के लेफ्ट साइड मतलब बाई ओर नमक, चटनी, कचुम्बर और पापड़ जैसे व्यंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में परोसे जाते हैं, जिससे हमारे भोजन का स्वाद और ज्यादा निखरता है। सीजन के मुताबिक चटनी और कचुम्बर के टाइप्स को चेंज करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पर्टिकुलर सीजन में जो भी फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं, उस हिसाब से हमारा भोजन तैयार होना ही चाहिए। फिलहाल गर्मी वाला जो सीजन चल रहा है उसमें हमने इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ली है। अगर आपके पास भी ऐसी ही सीजन स्पेशल इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारे देश की खाद्य संस्कृति को निभाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज शुरुआत में हमने बनाया मैंगो पुलाव। भिगोए हुए बासमती चावल, हापुस आम और कुछ चुनिंदा मसालों को यूज करके हमने मैंगो पुलाव इस यमी रेसिपी को एकदम शिद्दत से बनाया है कि नहीं। मैंगो सीजन को हर तरह से सेलिब्रेट करने की हमारी छोटी सी कोशिश एकदम कामयाब रही। उसके बाद हमने एक नॉन फायर रेसिपी बनाई। क्यूकम्बर स्मूदी नाम की इस मखमली रेसिपी ने गर्मी को थोड़ा कम करने की सफल कोशिश की। क्रिस्टल डेकोरेशन वाली और दही के साथ खीरा मींस ककड़ी का कॉम्बिनेशन तो गर्मी को मात देने एकदम सुपर कूल कॉम्बिनेशन साबित हुआ। अजी जनाब, बिना तले भी हम बहुत सी चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना ही सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करने की बजाय थोड़ा सा तेल लगाकर हम नॉन स्टिक पैन पर अपनी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल पकोड़े जो बारिश के मौसम में सिग्नेचर डिश है, उसे कैसे बनाए? तो जनाब जरा सुनिए। आप अप्पम पात्र को जानते हैं? हाँ, वही जिसमें अप्पम बनाते हैं, जिसमें इडली पात्र के जैसे कई सारे खांचे होते हैं। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसके हर एक खांचे में लगभग आधा चम्मच तेल फैलाकर हम पकोड़े भी तलेंगे और बटाटा वड़ा भी तलेंगे। कब? कब मतलब झमाझम बारिश को शुरू तो होने दीजिए, मौसम को करवट तो लेने दीजिए, सुहाना सा सावन बरसने तो दीजिए। फिर हम हाले दिल को बयान भी करेंगे और साथ ही लजीज खाने का जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके पहले आप कीजिए एक काम। आचार्य 90 FM इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी खिदमत करने का एक मौका दीजिए। वैसे बारिश के सुहाने मौसम में वो कौन सी चीज है जिसे खाना आपको बेहद पसंद है? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आजे भारतीय सीमा। अर्ज किया है, मेरी जमीन पर कितने ही आसमान रहे, आचार्य 90 FM के ऑडियंस का हमेशा ही साथ रहे। फिर लेकर आऊंगी मैं कुछ रेसिपीज सुहानी, हर रेसिपी के साथ एक छोटी सी कहानी। मिलना है हमें हर सोमवार और शुक्रवार, जायके के सफर में दिल हुआ बेकरार, सजती है थाली और खाने में मसाले, आऊंगी मैं वापस अपना वादा निभाने। हमारी भारतीय संस्कृति में जायके का भंडार। ऑडियंस जी, जल्द ही मिलेंगे हम और लाएंगे स्वाद के जायके का दरबार। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: मेहमान तो।
1: सॉरी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक

0: बच्चों बच्चों कैसी है पेंटिंग देखिए देखो
1: अति सुंदर सर
2: फर्स्ट प्राइज सर
3: खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का, उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को।

0: सजाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सब से जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सब के ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टचिंग
1: करती
2: है, बहुत भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
1: हाँ।
2: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा
2: ज्यादा पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ।
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
1: जी,
2: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
1: हाँ।
2: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
1: हाँ।
2: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
1: हाँ।
2: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
1: हाँ।
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
1: अच्छा।
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
1: हाँ।
2: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
1: जी।
2: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर, अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
1: अच्छा।
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
1: हाँ।
2: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहां,
1: हाँ।
2: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
1: हाँ।
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
1: हाँ।
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
1: अच्छा।
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ,
1: अच्छा।
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है। हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है। ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस, वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था।

0: तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको हाँ. और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
1: अच्छा.
0: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
1: क्या बात
0: निकली. निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो. क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
1: हाँ.
0: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो औरों से मिलता है
1: जी,
0: जो पढ़ते हैं
1: हाँ.
0: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा,
1: अच्छा
0: है,
1: लिखा है
0: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे. तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना. फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था. तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
1: हाँ.
0: वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
1: जी.
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग विलायती बहू कहने लगे थे.
1: अच्छा.
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
1: हाँ.
0: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
1: हाँ.
0: वो भी मेरे को ऐसे इन्वाइट करते थे, मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती
1: जी.
0: कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को.
1: अच्छा अच्छा.
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
1: हाँ.
0: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
1: जी.
0: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा. जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है. तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साह वर्धन हुआ. फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
1: जी.
0: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
1: हाँ.
0: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
1: जी.
0: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
1: हाँ.
0: शब्दों के कैनवास में
1: अच्छा,
0: छपी
1: छपी हाँ.
0: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
1: हाँ,
0: थी
1: हाँ.
0: एक जैसे ये है
1: आखर लुकता हाँ.
0: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी.
1: अच्छा.
0: तो उसमें एक बार एक कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली.
1: अच्छा.
0: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
1: जी. अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे.
0: वो क्या था मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था.
1: अच्छा.
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी.
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर. तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है.
1: अच्छा.
0: मुझे आगे लॉ करना है
1: हाँ.
0: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया.
1: अच्छा.
0: बस अब क्या और क्या करना है. मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है.
1: अच्छा.
0: तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
1: हाँ.
0: पास में एक स्कूल था छोटा सा
1: हाँ.
0: और उसमें मैं जाने लगी. वन
1: अच्छा.
0: मंथ मैंने पढ़ाया
1: हाँ.
0: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहता. मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए.
1: अच्छा. हाँ.
0: वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
1: हाँ.
0: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
1: हाँ.
0: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई. 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी.
1: अच्छा.
0: कि हेलो दीदी बोल रही है. मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं. मैं राजू बोल रहा हूँ. मैंने कौन राजू.
1: हाँ.
0: अरे दीदी आप भूल गई हाँ. मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी यार.
1: अच्छा.
0: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में हूँ.
1: क्या बात है.
0: मतलब मैं वो पढ़ी थी उस समय खुशी की वजह से
1: हाँ.
0: तो ये मेरे को ना शुरू से था
1: हाँ.
0: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
1: हाँ.
0: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
1: हाँ.
0: का गाय वगैरह रखते थे
1: हाँ.
0: तो वो जब लेते थे उनसे
1: हाँ.
0: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी. उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
1: हाँ.
0: तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं. मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक
1: हाँ.
0: कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी.
1: अच्छा.
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
1: हाँ.
0: कि उसने 12th पास किया.
1: क्या बात है.
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में
1: सेट
0: शादी वादी हो गई, सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे,
0: तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी, घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो। मैंने कहा जो होगा, मैंने उनको समझा लिया, अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा।
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए। मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि RSS के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसी बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी, मैं ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में, वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है और आप आइए, वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है।
0: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा।
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना पेशेंट्स जो है, मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
1: जी।
0: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी,
1: उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है, आपको यही छोड़ जाना होगा, यही छोड़ कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी,
1: राइट,
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, गिरे ना कहीं
1: जी।
0: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था ये लोग कैसे
1: रहते हैं,
0: हम लोग इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी
1: जी,
0: वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा।
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जिसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है,
1: राइट,
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था।
1: बराबर।
0: और आके बस
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे,
1: मतलब
0: प्रफुल्लित होता था कि हमने हमारे
1: कुछ
0: हाथ से
1: तो
0: कुछ
1: किया।
0: तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं, ठीक है?
0: ठीक जी, थैंक यू।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे?
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं,
0: कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है, कहते हैं ना
1: जी
0: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी ये धूप ये दिन ये रात कल भी आई थी
1: आज भी आई है
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी, ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा,
1: क्या बात,
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा, गीत गाओ स्नेह का संसार लाई हूँ, जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई हूँ, क्या बात,
0: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ, क्या बात है कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है, और आज हमारे आचार्य 90 FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए, थैंक यू सो मच जी।

0: सुना दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी है।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका क से कभी। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा, पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए है क्योंकि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला है, वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बाइकआउट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं। हाँ। शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है, जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है, उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे, या हो सकता है मैं भी कभी ना जाना, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते गया। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक बार मेरा।
0: हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा, एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा। तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा, जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए।
0: अगर
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है
0: और तो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने आपने वो एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ उतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका रिश्ता है, वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया, ये मुझे मालूम है कि खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को, ये मुझे मालूम है। और एक आशिक के लिए जानना इतना काफी, मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम, प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था। जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है, उतना ही सेम है, उसी जगह पे, वो शिफ्ट नहीं होता है, वो वहीं पे, जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सचिन हो चाहे मनीष, उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए
1: कि किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है। आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है। सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है। जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे? प्रेम को छोड़कर
1: मैं कहूँगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए वो
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मेरे,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूँ लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया।
0: हाँ।
1: बोले तू कुछ है ही नहीं,
0: करेक्ट,
1: तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा,
0: हाँ।
1: कैश और हाँ। है? कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही।
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार, कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा को सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए, तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप किसी न किसी दौर में, किसी न किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हैं, हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट किसी न किसी वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
1: अब इसके बारे में हमें नॉलेज
0: वो तो जब जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल।
1: इश्क का रियल में शब्बीर भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे चलते रहता है। ये लोगों को लगेगा कि अरे ये तो महबूब की पहले तो तारीफ कर रहा
0: है, हाँ।
1: तो ये तो चलते रहेगा, ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो कुछ। अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने तू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूं क्या रहने।
0: वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है
0: तुझे,
1: तो बता तेरे वादों का एतबार करूं या रहने दू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूं क्या रहने।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी एक रेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं,
0: करेक्ट,
1: कभी ऊपर भी रहेगा
0: कभी नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है।
0: करेक्ट,
1: ऐसे ऐसे अशार आदमी लिख देता है लगेगा कि ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बना ही प्यार करता है,
1: महबूब को गाली नहीं दे
0: सकता,
1: आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले कबूल कराया भी,
0: लेकिन यही एक चीज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता है किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिए, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ। और वो इश्क पहुंचता है, मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है। और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मगर आज पर जो है आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
1: फिर भी
0: ऐसे ही। एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया, तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा। मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: तो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला के
0: बताता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलाबोरेट करूँ या कोई भी दुनियाकार भी इलाबोरेट करेगा बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरे तरीके समझे, मतलब मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है, मेरा मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मिलिया साहब है कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मिलने आया बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, तो बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली कि ये मैं ये चाह रही थी, तुम कौन, मैं कौन हूँ।
0: किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित
1: जाना,
0: एक हो जाना,
1: दो लोग एक, जैसे हम लोग अभी देखते हैं विवाह कहते हैं दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये इसका ये इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने के लिए, बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर को बताया करते थे, तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि आप खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
0: खड़ी है।
1: किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ। तो इस लेवल का अगर यूनियन है जो कि मतलब अभी तो
0: इसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट।
1: एक टॉर्च का फोकस अगर 10 mm का है तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा, एक LED का फोकस अगर 1 किलोमीटर तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है। आदमी कभी कभी मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं, तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखेगा जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम मेरे 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े।
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है, उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे, तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए, तो बहुत बार लफ्ज।
0: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो कुछ ऐसा ही है, मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊंगा। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉग तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है, 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
0: हाँ, दो, तीन, छह महीने मैंने नहीं लिखा।
1: तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया है, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो मतलब दिल से,
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ नाजिल हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर,
1: पूरी
0: हाँ, फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करता, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको, हाँ, कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ खोया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा आ रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते नहीं किसी को,
1: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वही रहे ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई जाती है, अरे क्या लिख दिया
1: मैंने, एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर पढ़ दूंगा ये, आपको मालूम है वो वाला शेर मैंने आपको सुनाया था,
0: इरशाद,
1: कई चराग है रोशन, कई चराग
0: है रोशन,
1: बस उनकी जस्तजू से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां,
0: वाह वाह वाह,
1: तेरी ही जात थी अब तक, मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है सो, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाया उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
0: हाँ, यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि ये समझो एक नदी बह रही है, बहुत, लेकिन सब हाथ धो रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देख,
1: मैं नदी की धारा देख रहा
0: हूँ, हाँ, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आप जब ये शेयर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ एक नदी

0: और अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे इससे मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जानना चाहिए था, मगर अब
1: तो, लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
0: आंख से आंख मिल गई उनको,
1: एक बार वो देख ले उसने खुश है, बस उसने ही खुश है।
0: जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
1: वाह वाह वाह,
0: जब से देखा हमने होश में आया है।
1: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है।
0: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
1: हाँ, तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर, मैं बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया। मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो वही, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया,
0: खराब हो गया।
1: तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दी।
0: ऐसा होता है जरूर,
1: हाँ,
0: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है। इश्क, अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए, वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे, एक दूसरे को टोके, एक दूसरे को ये करे, नहीं, इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें, जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ, ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे, जो तुम कल
1: थे ना, करेक्ट करेक्ट,
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा,
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहां से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहां पे आपने कुछ शेर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा, तो उसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है, नहीं, करेक्ट,
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर जब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज्मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वालों को देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपनी बस पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से कहूँगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब जो गुरु जी थे, और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे तो भुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो जो भी था उनका, जो जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा

0: अब वो परेशान हो गए। तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरुजी की गलियों से, निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहां से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहां पे कोठे पे चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वागल कैसे, आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम में मौलाना, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्लखाना होता है, जो वॉशरूम होता है आज, आज, आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक थे, तो तब वो गए और दोबारा देखते है कि अरे बुल्ला, ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं, मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह चाहते थे किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इस तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं।
1: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है, कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अब कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक चीज पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया? कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है, या कर रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है। ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम,
1: वाह वाह वाह,
0: कि ए इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और। तो ये पहल सुनियादी बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था आपने कुछ लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझ आता
1: है। तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो। तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन ठहर जा।

0: क्या बात है, क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ, बहुत मतलब
0: बहुत ही वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाना
1: है, बीच की है कुछ लाइनें, जैसे

0: क्या मतलब देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है,
0: ये ब्लॉक नहीं,
1: उसके आप, अलावा बात है, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं, उसके अलावा की बात ही करूंगा। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्बीर भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ ये, तो ये ज्यादा ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब की आप बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
0: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
0: एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द में।
0: नहीं लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
1: बिल्कुल,
0: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
1: सही।
0: फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
1: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं है शेर, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
0: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
0: वाह वाह,
1: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में, इस मिजाज में, बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है, इश्क हमें रहना उसी में,
0: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा
0: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे,
1: बहुत अच्छी तरीके से।
0: वाह वाह
1: वाह, वही है
0: क्या एक राइटर मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको पूरी रात बैठ के शायरी सुनाए, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहां पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कपकपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है। हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा,
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
0: ओके,
1: वही हमको मिला दिया था ना जब वहां पे दो आत्माएं थी, वही मिल लेते क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क भी कई कैटेगरीज है, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है, और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इसी दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो, मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बी भाई मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपनी एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग, जब दुनिया बनी बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए। तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समझिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, हमें यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करे वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक, मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले मिलता ही सकता, वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिला देता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम्हें अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ, वो तो सही बात है।
1: यही जवाब है मेरा, और
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते
1: यार? लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। मेरे सारे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है, मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
1: तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर।
0: अच्छा,
1: और सबको मतलब सबको, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
0: इश्क करें, प्यार करें, इसका मतलब यह नहीं जाके बोला, जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
0: Yeah, then anything gets bent towards humanity, just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive, आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो वी वी यू नो वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर लव, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया। शबीर भाई आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है नहीं।
0: वाह, इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसकी स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड, ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें, इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बनके आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते,
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है
0: ठहरे पर पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यार

ऑडियंस लोग, भाई सब चंगा है ना जनाब, सब ठीक होना ही चाहिए क्योंकि आचार्य 90 FM के ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखना हमें आता है। अर्ज किया है, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, उनको देखकर दिल झूमने लगा और सबके मन खिलखिलाने लगे। आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए है बेहद खास, स्वाद का जायका निभाने की मेरे मन में आस। हमारे शो पर बनती है अनोखी सी रेसिपी, मतलब टेस्टी खाने की जायकेदार लीगसी। आ गई मैं वापस निभाने अपना वादा, यम्मी फूड को शेयर करना यही मेरा इरादा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, जो बनाने के लिए हमें चाहिए आम। भाई आम का मौसम चल रहा है तो मैंगो मूड सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अमृत जैसी टेस्ट वाला आम इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी, जिसका नाम है आंब्याची अमृत फळे। महाराष्ट्रीयन लोगों को वरण फळे मीन्स दाल ढोकली तो पता ही होगा। मसालेदार दाल में आटे के पतले टुकड़े डालकर हम वरण फळे बनाते हैं, लेकिन आंब्याची अमृत फळे ये लजीज खाना बिना ग्रेवी वाला है। इसे खुशबूदार आंबा मोहर चावल के साथ पकाकर किसी शेप में काटा जाता है। आप आंबा मोहर चावल को जानते हैं ना? आंबा मोहर चावल महाराष्ट्र का पारंपरिक और छोटे दाने वाला चावल है। इसे पकाते वक्त हर तरफ इसकी खुशबू छा जाती है। पूरी तरह से पकने पर इस आंबा मोहर चावल से आम्र कुसुम मीन्स आम के फूलों से खुशबू आती है, यानी कि आम्र मोहर की खुशबू। इसीलिए इस चावल को आंबा मोहर चावल के नाम से जाना जाता है। इसे ज्यादातर पुणे के आसपास वाले इलाके में उगाया जाता है। वैसे बासमती चावल भी काफी खुशबूदार होता है। बासमती चावल का दाना आकार में बड़ा होता है और आंबा मोहर चावल का दाना छोटे साइज वाला होता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी की ओर अब हम बढ़ते हैं। आंब्याची अमृत फळे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: आंबा मोहर चावल 1 कटोरी, पके हुए अल्फोंसो मीन्स हापुस आम 2, पानी 1 कटोरी, देसी घी लगभग आधा कटोरी, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 4 चम्मच, केसर के धागे 7 या 8, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, सॉल्ट पाउडर 5 चम्मच, खसखस मींस पॉपी सीड्स 1 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने ही वाली हैं। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पके हुए हापुस आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 घंटे तक हमें इसे पानी में भिगोकर रखना है। ऐसा क्यों करना है, भूल गए आप? जनाब, आम की तासीर गर्म होती है। पानी में रखने से आम में से गर्मी निकल जाती है और ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात, क्या आप सौंठ का मतलब जानते हैं? सौंठ मींस सूखा अदरक। सूखा अदरक पीसकर बनता है सौंठ पाउडर। इसका मतलब है कि हमारी आज की रेसिपी थोड़ी मसालेदार भी होगी, है कि नहीं? इस बात पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें इन चावलों को सुखाना है, इसके लिए कॉटन के एक कपड़े पर इसे फैलाकर रखिए। लगभग 2-4 घंटे के बाद इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका रवा बनाइए। उसके बाद मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में हमें गरम करना है घी। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी घी को गरम कर रही हूँ। फिर उस गरम घी में हम डालेंगे मिक्सर में बनाया हुआ आंबा मोहर चावल का रवा। लगभग 10 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। तब गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। ऐसा करने से ये रवा गोल्डन कलर का होगा, नहीं तो वो जल सकता है और किचन में धुआंधार परफॉर्मेंस वाला सीन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ताजा आम रस। फिर ऐड कीजिए ढेर सारा प्यार। इसे आप अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर बारी आती है शक्कर, केसर और थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर की। इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा और घी और साथ ही खुशबूदार इलायची पाउडर। इस देसी घी और इलायची पाउडर की खुशबू से आपका घर महक उठेगा, क्या बात। अब इस कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारी आंब्याची अमृत फळे अब फाइनल टच के लिए है तैयार और इसे खाने के लिए हम कैसे करें और इंतजार। तो भाई अब आगे सुनिए। सूजी का हलवा मींस शीरे जैसे ये कढ़ाई वाला मिश्रण दिखने लगे तब आप गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस मिश्रण को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले उस प्लेट पर थोड़ा सा घी सब तरफ अच्छे से फैलाइए। फिर कढ़ाई में तैयार मिश्रण को उस घी वाली प्लेट में निकालिए। इस गर्मा गर्म मिश्रण को 1 कटोरी के बेस की मदद से अच्छे से चपटा करके फैला देना है। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब ही इस पर खसखस और ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को फैला दीजिए। बाद में कटोरी के बेस से इसे भी प्रेस कर दीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद इस तैयार मिश्रण को छुरी की मदद से स्क्वायर शेप में काटिए। इस प्रकार आंब्याची अमृत फळे अब खाने के लिए है एकदम तैयार। एक सुंदर सी कटोरी में रखकर इस आंब्याची अमृत फळे का भोग आप भगवान को लगाइए। ऐसा करने से खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसका एक टुकड़ा उठाकर बड़े आनंद से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस आंब्याची अमृत फळ की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है प्रस्तुत हुआ अमृत। न्यारी सी एक मिठाई, नाम में जिसके अमृत, आमरस और चावल से इसे बखूबी किया प्रस्तुत। आम से बने व्यंजनों की इस शो में भरमार, स्वाद का जायका निभाने आई भारतीय सीमा बनकर कर्णधार। हम खाना खिलाते खिलाते सुनाएंगे कुछ गाने, कभी नए तो कभी भूले हुए फसाने। हमेशा बनी रहे ऑडियंस जी, आपसे हमारी दोस्ती, आसानी से भूल जाओ ऐसी नहीं ये हस्ती। भारतीय खाने में छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज। अब बारी है अगली रेसिपी की, लेकिन पहले बजेंगे कुछ साज़।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे गर्मी के सीजन में एक और फल मार्केट में आता है। इस फल के बीज निकालकर उसे नमक लगाकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ऐसा सुखाने से लाल रंग वाला ये खट्टा फल काले रंग का बन जाता है। इसे मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इस सूखे हुए फल में नारियल का दूध मिलाकर बनाई जाती है कोकम कड़ी, मींस सोल कड़ी। ये ताजगी भरा व्यंजन है। ये अपने खट्टे मीठे और पाचक गुणों के लिए फेमस है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होने के साथ हल्का मसालेदार भी होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या जामुनी होता है, जो कोकम से नेचुरली आता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ठंडक छा जाती है और हीट स्ट्रोक से बचाने में ये बहुत ही प्रभावी मींस असरदार है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को फायदा ही मिलता है। मींस अपनी ब्यूटी रेजिम में आप कोकम कड़ी को जरूर शामिल कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कोकम कड़ी को सिंपल चावल के साथ खाना मतलब कंफर्ट फूड खाने वाली बात। इस टेस्टी और हेल्दी कोकम कड़ी या सोल कड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सूखा कोकम 8 से 10 टुकड़े, कोकम भिगोने के लिए गर्म पानी आधा कटोरी, फिर हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 1 कटोरी, हरी मिर्च 1 या 2, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 3 लीजिए, लहसुन की कलियां 3-4, ये ऑप्शनल है, जीरा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब तड़का लगाने की सामग्री को जानते हैं। हमें चाहिए तेल या देसी घी लगभग 1 चम्मच, राई मतलब सरसों 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते, गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कोकम कड़ी मींस सोल कड़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले सूखे कोकम को 1/2 कटोरी गर्म पानी में भिगोकर रखिए। लगभग 1/2 घंटे बाद कोकम का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तब उसी पानी में कोकम को अपने हाथों से मसल दीजिए, मींस क्रश कीजिए। ऐसा करते समय उसके बीज आप हटा दीजिए। अब हम नारियल का दूध बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। मिक्सर के जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए, उसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन ऐड कीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लीजिए। अब इस पीसे हुए मिश्रण को महीन छलनी में डालें, छोटे छेद वाली छलनी से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। सॉलिड वाले पेस्ट को अपने हाथों से निचोड़कर हमें नारियल का गाढ़ा सा दूध मिलेगा और वो लिक्विड वाला भी चाहिए। भाई टेस्टी सोल कड़ी को एंजॉय करने थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब इस नारियल के दूध में मसल कर बनाया हुआ कोकम और उसका पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक। अब इस गुलाबी मिश्रण को हम खुशबूदार तड़का लगाकर स्वाद का जायका निभाने वाले हैं। इसके लिए एक छोटे से पैन में थोड़ा तेल या घी गरम कीजिए, उसमें सबसे पहले डालिए सरसों मींस राई मस्टर्ड सीड्स, फिर उसमें ऐड कीजिए कड़ी पत्ता। वाह वाह वाह क्या बात, इस खुशबूदार तड़के को कड़ी में डाल दीजिए। 1 चम्मच की मदद से इसे मिक्स कीजिए। इस तरह सोल को खुश करने वाली खट्टी मीठी और जरा सी मसालेदार कोकम कड़ी हो गई है तैयार और इसे डेकोरेट करने हम हैं बिल्कुल ही तैयार। आप
आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सोल कड़ी को डेकोरेट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप यहीं पर बने रहें, मैं यू गई और यू आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस गुलाबी कोकम कड़ी को सुंदर से एक कांच के ग्लास में परोसिए। फिर इसकी सुर्खी को सजाने के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। दैट्स इट। अब सोल कड़ी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सोल कड़ी का गुलाबी रंग निखारने के लिए मींस इसे डार्क पिंक बनाने के लिए आप इसमें बीट रूट का थोड़ा सा जूस मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका गुलाबी निखार और बढ़ेगा, साथ ही इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को एंजॉय करने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब कीजिए। इस सोल कड़ी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सोल को खुश करने वाली सोल कड़ी। गुलाबी रंग वाली सुंदर सी कड़ी दिखने में लगती है नजाकत से भरी। इसके टेस्ट से खुश होगा हर किसी का सोल और इसके स्वाद का ना कोई दूजा मोल। कोकम कड़ी है महाराष्ट्रीयन भोजन की शान। इसे टेस्ट करके आप जरूर करेंगे इसका गुणगान। नारियल का दूध और कोकम का कॉम्बिनेशन मतलब स्वाद का जायका निभाने वाला खट्टा मीठा क्रिएशन। आऊंगी आपसे मिलने हर सोमवार और शुक्रवार। शेयर करने कुछ रेसिपीज, मेरा दिल होता है बेकरार। अपने देश की खाद्य संस्कृति को जानने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। हुकुम कीजिए ऑडियंस जी, हम पूरी करेंगे आपकी विश। देसी खाना खाकर गर्व। भारत की तरक्की का अब शुरू हुआ है पर्व। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अब हम सुनते हैं एक झटपट रीकैप। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बनाई आंब्याची अमृत फळे। अल्फोंसो मैंगो पल्प को खुशबूदार अंबा मोहर चावल के साथ पकाकर हमने मैंगो सीजन को सेलिब्रेट किया। इसके बाद हमने बनाई सोल को खुश करने वाली टेस्टी सोल कड़ी। नारियल का दूध और खट्टा मीठा कोकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट बर्ड्स को दे रहा है फैसिनेशन, है कि नहीं? भारत के अलग अलग हिस्सों की खाद्य संस्कृति को हम स्वाद का जायका इस शो पर शामिल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वैसे रेडीमेड खाना ऑर्डर करना ये ऑप्शन तो हर कोई चूज कर सकता है, राइट? लेकिन अपने देश की जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमें लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए और बनाकर औरों के साथ एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनापन जताने की कोशिश करते हैं। हमारे मन की भावनाएं मतलब ढेर सारा प्यार हम हर रेसिपी में जरूर ऐड करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सिंपल सी लगने वाली आसान रेसिपी भी कंफर्ट फूड बन जाती है। जब शबरी जी ने भगवान श्री राम के लिए बेर चुने तब उन्होंने पहले उनको टेस्ट किया, क्योंकि शबरी जी चाहती थी कि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठे वाले बेर ही खाने चाहिए और भगवान श्री राम जी ने उनकी भावनाओं का आदर किया। शबरी जी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने बिना हिचकिचाहट बड़े आनंद से ग्रहण किए, क्योंकि शबरी जी के मन की भावनाओं का भगवान श्री राम ने आदर किया। ठीक उसी तरह हमें भी खाना बनाते समय अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे मन की भावनाएं हम बना रहे खाने में उतरकर उस खाने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन खाने की टेस्ट को बिगाड़ देता है। किचन में पकाए जाने वाले भोजन पर अच्छे संस्कार करने के लिए आपकी सोच मायने रखती है। भाई खाने और खिलाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा ही नहीं एकदम पक्का वादा। आज भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।

0: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। मैम हैज डन हर फैकल्टी एट शी इज फैकल्टी ऑफ माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी। शी इज अ एमिनेंट क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट। शी हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल इन MA इन वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड शी इज डिसिपल ऑफ विदुषी अपूर्वा गोखले जी एंड पंडित किरण फाटक एंड विदुषी धनश्री पंडित राय। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अवार्ड, लता मंगेशकर अलंकारण अवार्ड विनर एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन मेमोरी ऑफ श्री आर सी जाल। परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम गाथा इन 2023, परफॉर्म्ड इन इंडो हंगेरियन प्रोग्राम इन 2024 एंड परफॉर्म्ड इन श्रीलंकन प्रोग्राम इन 2025। शी हैज पब्लिश 2 पेपर्स इन इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स इन 2023 एंड 24। शी हैज बीन द जज एट ZTV लिटिल चैम्प्स एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल बाय देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इन मेमोरी ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म शताब्दी महोत्सव। शी इज एन एक्टिव क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड यूट्यूबर विद 100+ वीडियोज एंड 4,000 सब्सक्राइबर्स। अवार्डेड गुरु गौरव पुरस्कार बाय आर्ट एंड बिट्स फाउंडेशन पुणे इन 2024 एंड अवार्डेड बाय संगीत कला सम्मान बाय अखिल भारतीय श्री गांगड़े समाज महिला मंडल खांडवा एंड 9th March 2025। So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खांडवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी। तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को। और ट्रांसफरेबल जॉब में थे लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है।
0: हाँ।
1: उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए।
0: हाँ।
1: और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी, मतलब म्यूजिक हो चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो।

0: यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा।
1: हाँ।
0: लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम है।
1: हाँ,
0: संगीत के लिए आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ।
1: हाँ।
0: और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के

0: धनश्री जी से ली है
1: जी जी और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो बहुत बड़ी विदुषी है हाँ सुनीता जी अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: और सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, सो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुट्टू जी का शुरू से ही पसंद, बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं तनुश्री जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। सो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: देखिए, मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का, खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक कॉलेज ओपन हुआ है। सो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर की बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। सो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: जरूरी, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी जी उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: देवास।
1: अच्छा,
0: यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते, आप सुनते रहिए आचार्य 98।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एकांत चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ों को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत ज़रूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, और मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, सो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लिए, और तीसरा मनन चिंतन करने से. ये अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, ये राग है तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, तानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जो मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, सो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा.

0: श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं,
1: सो
0: उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है। सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोटा लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है। तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है। और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा। और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक। तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला और 75+ स्टूडेंट्स थे वहाँ, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद सुमैया जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो 2021 से माया सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BPA, MPA, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब की डिग्री दी जाती है।
1: तो मैम, आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली, मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज करते हैं, तो इनके प्रति जैसे हम देखते हैं पुणे में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा उनका लगाव रहता है, लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया। बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सा रे सा ग म ध नी ध सा। अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा अधिकार, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन राग हमें आज पता चला, दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे। और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं, विदाउट एनी नॉलेज। तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे। तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: बिल्कुल। अब हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ती होंगी, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
0: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष है, शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है। जना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के हैं,
1: अच्छा
0: 2 प्रैक्टिकल के।
1: ओके।
0: तो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है। बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी, बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं, और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके।
1: और ऑटोबायोग्राफीज भी कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है।
0: हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े। लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया।

0: तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या पंडित जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी से हैं, जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है। लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है, सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है।
1: और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश कारे जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, सो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। आप कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते हैं।
1: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने
0: बराबर। तो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना
1: जी।
0: मैंने इसी 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
1: होते थे,
0: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशे में सिखाती थी स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। सो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशे सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ रैप बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके भी बात की है।
1: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर जुड़ते हैं डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें. मैम अभी पढ़ते हैं आपके PhD की ओर. PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज एंड षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर.
0: अच्छा.
1: सो हमारे यहाँ सुमया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी. सो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए.
0: अच्छा.
1: इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है.
0: हाँ.
1: सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी की वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला.
0: हाँ.
1: और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया,
0: हाँ,
1: तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है.
0: हाँ.
1: हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं,
0: हाँ,
1: तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया.
0: अच्छा.
1: और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे.
0: ओके.
1: तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया.
0: हाँ.
1: और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया.
0: हाँ.
1: कि ये बहुत अच्छा है, और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला.
0: हाँ.
1: बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं.
0: हाँ.
1: तो ये बहुत अच्छी बात है. और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं.
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके.
1: करेक्ट.
0: और उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा फास्ट होते हैं. तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स इन डेली लाइफ. वो भी सुनते, अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है. भी है. तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशंस है उसका थोड़ा डेमोंस्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर. म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर. तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा. और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही,
0: अच्छा,
1: मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया. और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं, और उन रागों का क्या प्रभाव है. सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज्यादा करेगा. सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसको मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ. और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए.
0: हाँ.
1: और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं.
0: हाँ.
1: और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम.
0: जी. तो थोड़ा वापस से गाना सुनना
1: चाहेंगे,
0: तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक.
1: या जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए राग यमन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है. सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है. सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ. जैसे यमन राग की अगर हम बात करें,

0: मैम और एक क्वेश्चन अभी अभी हम एंड पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत के, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है. तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के बाद कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं जो मेरा विषय भी है पीएचडी. सो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है. अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है. मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीजें खुद से नहीं निकलेगी, क्योंकि राग ना जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. सो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें. तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है. तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए.
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है. एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए. कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज गाती हूँ और दर्शकों की नजरों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना. तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा घप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती है, या जैसे वो गाती है हमें तुमसे प्यार कितना. तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा, राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसी
0: है.
1: प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खरा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, उनका टेस्ट क्या है. तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक. वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है. और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है.
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM. और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग.
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा एंड में.

शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, थाई शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे, आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद
हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यम्मी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगोकर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा।
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मीन्स उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवन की चटनी हो गई है तैयार। और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांटकर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एड

एयरटाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन कशला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो। स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब
और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम। दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट। दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।